0: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
1: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting license for a reason? Our license allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programs that inform, educate, and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the Australian Communications and Media Authority, ensuring balanced programming, community access, local participation, and responsible broadcasting. That means when you tune in to 5EBI, you're hearing a station that exists for the multicultural community, not for profit. Your voices, your stories, your music, and your culture all have a place here. Community radio licenses help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you for supporting 5EBI, Adelaide's multilingual community radio station. 5EBI, broadcasting for our communities.
2: Celebrate multiculturalism with 5EBI.
3: Good evening. You're listening to 5EBI FM 103.1, your multicultural radio station. The time at EBI is approaching 5 o'clock and it's almost time for the Indian Community Programme Fridays with Richa. Sit back and enjoy the programme here on 5EBI FM, and to all the Indian listeners, Namaskar.
4: Tune in to Friday with Richa, only at 5EBI 103.1 FM. Relax with Bollywood hits and immerse yourself in the vibrant sounds of Bollywood. Join Richa for a musical journey at 5 p.m. every Friday. Don't miss out.
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा और आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा हर फ्राइडे शाम 5 बजे सिर्फ 5EBI 103.1 FM पर। अगर आप एडलेड से बाहर हैं या किसी वजह से हमारा प्रोग्राम लाइव नहीं सुन पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे www.5ebi.com.au पर कभी भी ऑन डिमांड पर सुन सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सी शाम की शुरुआत एक शानदार शेर से करते हैं। वक्त की रफ्तार से जो दोस्ती कर लेते हैं वो हर नए दौर में अपनी पहचान बना लेते हैं, और इसी बदलाव के दौर की बात आज हम करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आज का ये दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का। हर तरफ एआई की चर्चा है दोस्तों, है ना। कोई कहता है कि एआई हमारी जिंदगी आसान बना देता है, तो कोई कहता है कि लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। कुछ लोग इसे इंसान का सबसे बड़ा साथी मानते हैं, तो कुछ इसे बहुत बड़ा खतरा। तो क्या सच में एआई हमारी दुनिया बदल देगा? क्या डॉक्टर, टीचर, रेडियो होस्ट, इंजीनियर या फिर आर्टिस्ट सबकी जगह मशीनें ले लेंगी, या फिर एआई सिर्फ एक ऐसा टूल है जो इंसानों की क्षमता को और बढ़ाएगा? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे बिल्कुल आसान भाषा में और कुछ रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ और बात करते हैं आज कुछ इंटरेस्टिंग AI फैक्ट्स के बारे में।

वाकई दोस्तों, यहाँ कल क्या कब हो किसी ने कुछ नहीं जाना। वाकई आप बात कर रहे थे एआई की, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ दोस्तों कि वर्ल्ड की कई बड़ी कंपनियाँ एआई का इस्तेमाल तो बहुत पहले से कर रही हैं। हॉस्पिटल्स में बीमारी पहचानना हो, या फिर फार्मर्स की खेती हो, या फिर बैंक्स में फ्रॉड पकड़ने से लेकर फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट तक एआई हर जगह अपनी जगह बना चुका है। लेकिन एक बात और भी सच है दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई का ज़्यादातर नौकरियां पूरी तरह क्या एआई खत्म कर देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं। मुझे क्या सभी ऐसा कहते हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार आगे आने वाले वर्षों में कुछ नौकरियां कम तो ज़रूर होंगी, लेकिन एआई, डेटा, साइबर सिक्योरिटी और ह्यूमन स्किल्स से जुड़े करोड़ों नए अवसर भी बनने वाले हैं। इसलिए डरने से ज़्यादा ज़रूरी है नई स्किल्स डेवलप करना और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना। एक बात और याद रखिए दोस्तों कि एआई इंसान की जगह नहीं लेगा, लेकिन एआई का इस्तेमाल करने वाला इंसान शायद उस इंसान की जगह ले ले जो उसे सीखना ही नहीं चाहते। तो आज बात हम करने वाले हैं एआई की, और कर रहे हैं उनके फायदों की और उनके चुनौतियों की। और बीच बीच में हम सुनवा रहे हैं आपको कुछ प्यारे जबरदस्त धमाकेदार गाने। सुनते रहिए 5VBI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा, रिचा के साथ एक और बेहतरीन सा गाना, मेरा बहुत फेवरेट। आइए सुनते हैं।

0: You are tuned into Friday with Richa at 5 EBI 103.1 FM. Join Richa every Friday at 5 p.m. You are listening to Friday with Richa.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आपने ट्यून किया है 5 VBI 103.1 FM और आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा। तो दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा AI की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो जब भी आप गूगल पर जाते हैं, ईमेल लिखने की कोशिश करते हैं, फ़ोटो बनाने की कोशिश करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, AI आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन क्या AI नया है दोस्तों? असल में नहीं, इसकी शुरुआत लगभग 70 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इसकी ताकत और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। आज हर इंडस्ट्री में इसकी बात हो रही है। तो सवाल ये नहीं है कि AI आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम AI के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे और AI को सीखेंगे या नहीं, और AI का इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं। पहले सुनते हैं गाना, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे।

काश ऐसा होता दोस्तों कि हमारी शाम और हमारी रातें गाती हुई होती और हम मस्ती में डूबे रहते, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना दोस्तों। लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी है और गाली साहब ने क्या खूब कहा है, आग का दरिया है डूब के जाना है। तो दोस्तों आग में डूब तो हम चुके हैं, अब पार कैसे निकलेंगे ये देखना है। खैर मैं बड़े मजाक के मूड में आ गई हूँ और मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ दोस्तों कि अगर AI इतना इंटेलिजेंट हो गया है तो क्या ये मेरी तरह रेडियो शो भी होस्ट कर पाएगा? शायद आवाज तो बना दे, स्क्रिप्ट भी लिख दे, लेकिन लिसनर्स के प्यार और उनके मैसेजेस पढ़ते वक्त जो एहसास दिल में होता है ना मेरे, वो शायद सिर्फ इंसान ही महसूस कर सकता है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि AI मेरी जगह लेने वाला है। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है radiowithrucha@gmail.com।

दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 5 VPI 103.1 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त रिचा।

0: You are listening to Friday with Richa only at 5EBI 103.1 FM.
1: For live streaming at www.5ebi.com.au. Also on demand at
0: www.5ebi.com.au under Indian Hindi.
1: Join us on Friday with Richa.
2: वेलकम बैक दोस्तों. तो हम बात आगे बढ़ाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि एआई के फ़ायदे के बारे में चलिए बात करते हैं. तो एआई के फ़ायदे कम नहीं हैं दोस्तों. अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को बीमारी जल्दी पहचानने में मदद करने लगा है, फार्मर्स को मौसम और फसल की जानकारी देता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में हेल्प करता है और सीनियर सिटीजन के लिए स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है. यानी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई इंसानों का एक बहुत बड़ा हेल्पर बन सकता है. लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है दोस्तों. फेक फोटोज़, फेक वीडियोस, ऑनलाइन स्कैम्स और मिस इन्फॉर्मेशन जैसी चुनौतियां भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. इसलिए एआई से पहले अपनी सोच का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. हर चीज़ पर तुरंत विश्वास मत कीजिए. जी हाँ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि एआई से फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं. और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अपने बच्चों पे पूरी मॉनिटरिंग रखिए कि वो क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो मोबाइल पे विद एआई.

दोस्तों, स्टूडियो में ये गाना सुनते सुनते मुझे अचानक से एक बात याद आई कि आजकल के गानों में कितना बदलाव है। पहले जो गाने होते थे उनमें एक अलग ही बात होती थी, और आज के गानों में म्यूजिक प्रधान बहुत हो गया है। मैं ये कहूँगी कि एक्सप्रेशंस शायद उतना नहीं है, लेकिन शायद ये भी है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आज के गाने उतने अच्छे नहीं हैं, इफ़ेक्टिव नहीं हैं। हर दौर में अपना एक अलग मज़ा होता है। वो कहते हैं ना कि जैसे कि कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, स्मार्टफोन्स आए, वैसे ही अब नए तरीके से AI भी हमारी ज़िंदगी में हिस्सा बन गया है, और उससे अब तो गाने भी बनने लगे हैं। लेकिन चलिए, मेरा तो यही कहना है कि जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है, और इसी उम्मीद के साथ मशीनें हो रही हैं तेज़, लेकिन सपने आज भी इंसान ही देखते हैं, AI नहीं देखता ना दोस्तों। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और बहुत खूबसूरत सा गाना रूबरू रंग दे बसंती से सुनते हैं। AR रहमान का एक बार और म्यूजिक है, जो कि एक दमदार म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनका म्यूजिक कुछ हटके होता है। आइए सुनें।

टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, लेकिन सुरों का जादू और दिल से दिल का रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं हूँ ऋचा, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 5 UBI 103.1 FM। खुश रहिए दोस्तों और मुस्कुराते हमेशा रहिए। जी हाँ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक फ्राइडे ठीक 5 बजे। Bye-bye.